हम आकाशवर अल्लाह ओट्टर ओशुम गस्फलुवा रसकलांगे एकलांगे मारवे फावा थकेतिन दिरे थकेति नेरुवा रसकलांगे आदि दिरे थकेतिन मारवे फावा थकेति नेरुवा रसकलांगे ऐ अल्लाह फहे त्यबा मीहुम ईमान कम इक्की बावे गन्ननी खुम फदे कुम हिये।

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुन कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य क्या डूं
3: हालो कबा मेरा तो किए ने
1: वारा रंगल
4: वारा फक्का हम
5: मेरा तो यहाँ रंगले नो
4: वारा बलिको
5: देंगे कहाँ लगोते
6: हम वारा बेस्टो
4: दें यहाँ यहाँ नो
3: ऐहुन तेरिंगे हाला हुआल ओलम फिलवाला वाह कदक कालो मा
6: कौन मैं बुद्ध दो है किरेगाड़ो एकार कट सुम मिनट का तिवी राज्य के अड़ों केन्द्र तेरी
5: मिया तो की ही नहीं
7: इंहा सातरस्ते का 49 किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: हेमा पे जहिफा वा मी है गिफारातों एहम मी है का बाली फेतुर दाने मुद्दा तकी को बा
8: बिहिनेगुम के हतर दुआ स्कोरिंग बिहिनेगुम फहो हतर दुआ हा हमें बाली जही फवा में हा के फरातों अहम में होना बाली फतर मुगे फुर्सत होवे
9: हिम बिहि के अलामत फेनि जनम लसन कुरबा सिही फरवा हो दवा
10: दुनिया के हतर बितुन
11: राजे के उतुरा देखुनु
10: खबरा मालूमात
11: हुट मेन्नेति सर्विस गडीरु
10: दिवे ही राज्य के आडू
11: इंहा सतरस्ते का 49 किलोहर्ट्स मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: कोणता का मोदी भेटी दानी
1: दुसरा मोदी भेटी एक दान जीज देन केते नुआने मोदी भे अन्ना ना हंगे
0: मोदी भे अब हम अन्ना ते
1: आ लहर नुआना मे अन्ना नी हंगे
2: कीने भी भाई कौन अड़ता क्यों नहीं है काला कोबेली क्या दोस्त गधा मत पसंद कीने पा वाम में उड़े वाम के संधों का कीने भी भाई आधा बाहर के बतेले ये संधों को सुभान अल्लाह संधों को के किबा फिला पूरा लाइफ संधों को कितने एनी कुती मामा मामा ती मामा ता मामा मारे नो ऐता मामा नो नो ए मामे नो
0: मी है के मसाला में कुरे मा कैसे मी है के मुदिम्बे
2: को बात अरे बात हूँ एक अबुर है बात एक तो फाइन बालागा बिच
0: सुभान अल्लाह
2: बात हूँ गबुर है रान्ने फुलकु तनकु लंबा है इसनो दा दुए दुए वारुपुर बिच अधिम इस गबुर है रान्ने आरिंगे फातो
0: कीने देवादानी
2: मिफारो मकाने
0: मैं आदोनी
2: राशु के खोला अधिमिस गबुरो उन्होंटे मैं बड़ो ओला दिमाया मिदिमाया अब मुदे मैं
0: है के मसाला में कुरे
3: अलो
0: मामियो कानी
3: अब हम मैं दो नंगरा राशु के नहाते होंगे मैं खानू दोगे मालूम आती फिर नहीं रहा मारे इंगेज़ मेरे हर सिरे का दाह हमें नहीं का कर ये तुम्हें साली बात दोस ये मेरे मन में समझे खालो अब हाँ दे उन्हें ना दे उनका हम नसीब है ना यह नूना मिसर के दोस में दिखा खबर है फिर ये पास भी दे हिसाब फड़वेरी ने अब हम मेरे फड़ों अब हम दौड़ ने रे आवाज करे यह नूने हर में एम एन के दोस दान आवाज करे फड़वेरी ने खालो मैं तो जा रहा आवाज करा
4: दोनेरी खांडूदुआ के नू नातोल के देखुन भी तुका उन्ना फालू रशे कुरिम में हुं दीरी उन्नु कमाबुने अदि एकम के असर ता फेन्ना हुरी रशे इरशाय में कैरी का उन्ना में हुं दीरी उले रशे के नू नातोल वेली दु दोनेरी खांडूदु फालू वितारी है एंगे कशने इरा फालू कमाबुना दे फोकलोरेंगे ए फोकलोर की मनदु गाउल विकमाबुना हाजी बंडारेंगे वाहक या गुलवागें किया फोकलोर देवन फोकलोर की वेलिदु काउनु कमबुना वरमोळु फंडित वेरिया का गुळवागें किया फोकलोर मि दे फोकलोर का वेस फंडित वेरिकां ओवे आदि एक मिसमी हुं किया दिनुम का कुदि कुदि तफात के पेसुरे मि ड्रामा लियुम का आळुगन असलक बेली अब्दुल लसाई दुली वा फावा दे फोकलोर के तेरें वेलिदु काउनु फंडित वेरिया या गुळवाफा फळविकम ली फावा हादिसा ड्रामा कुळुम का बैवेरीवी मोहम्मद रामीज हुसैन रशीद मोहम्मद निहान Ali Haseen, Aziza Farooq, Lashan Nahumad, Adi Ramla Ibrahim. Drama liye ufadda ekulawali, Alukan Aishat Naima. Wassalamu alaikum.
5: Evela.

0: मुन्ना कोबा की है ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में के दक काफुंग अतः
2: मुन्ना थी है बरको वेंडा हिंका में ने अफन थी कं कोलन ना
1: तिकु दुं हाउ द हाई रंगल लाए तिहें मुन्ना आए कही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कं को देन्ना हेदी मुन्ना वरहा उपावे